0: अगले देश करने की इजाजत चाहती
1: हूँ। किसी भी की परवाह नहीं, मैं तो दूर के पले तो जा सकता हूँ।
0: बहुत याद आ।